नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने

सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रेजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूद

0: को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
1: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
2: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
0: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैव्य शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा।

0: अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगे। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, CBD मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ाने बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे AI की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नव भारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और OP माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड OP माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. OP Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the President has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the Governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the Governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the Governor.

स्वागत है आप सभी का 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का ये एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। सुबह के 8:40 हो रहे हैं और ये समय होता है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम मस्त मुंबई का। तो चलिए मस्त मुंबई की शुरुआत आज करते हैं किशोर कुमार की आवाज से। गीत के बोल लिखे हैं नीरज साहब ने और इसे संगीत वर्ध किया है एसडी वर्मन साहब ने। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी और हमारे जितने भी श्रोता हैं किशोरदा को चाहने वाले हैं उन्हें तो अंदाजा हो ही गया होगा कि किस कौन सा गाना हम यहां पर प्ले करने जा रहे हैं और क्यों आज क्या खास है। ये सब बातें हम तो करेंगे, फिलहाल ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ, मैं हूं रविशंकर। कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है, मस्त मुंबई का ये पहला गाना आप तक।

0: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों, पूछना क्यों।
2: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आकाशवाणी का ये FM रेनबो चैनल है, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। मस्त मुंबई कार्यक्रम में आज हम आपको किशोरदा के गाने सुनवा रहे हैं, और चूंकि आज 13 अक्टूबर है और आज ही के दिन हम उन्हें स्मृति दिवस के तौर पर याद करते हैं। 13 अक्टूबर 1987 यानी आज ही के दिन किशोरदा का

इंतकाल हो गया था, तो इसी रूप में आज के दिन को हम स्मृति दिवस के रूप में, पुण्यतिथि के रूप में याद करते हैं। और आज मस्त मुंबई में हम उन्हीं का जिक्र करेंगे और उनके गाने सुनेंगे। हमारे जितने श्रोता हैं वो तो किशोर दा को बखूबी जानते हैं, उनके बारे में, उनके गानों के बारे में, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को भी कुछ जानकारी देना ज़रूरी हो जाता है इन महान हस्तियों के बारे में, जिन्होंने अपने आवाज़ से, अपने कला से हम सभी संगीत प्रेमियों, सीने प्रेमियों को कई वर्षों तक, लंबे अंतराल तक, या यूं कहिए तो सदाबहार रहे हैं, और आज तक हमें हम उनके गाने को सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो इस वक्त इस मोड़ पर पेश है लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़, आनंद बख्शी साहब के लिखे बोल हैं, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत है। फिल्म का नाम है कर्ज। बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

जी हाँ, सुबह के 9:07 हो रहे हैं। कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। रुपहले पर्दे पर चमकने वाले सितारों की बात करें तो इनमें से किशोरदा की पहचान सबसे चमकदार सितारों में से एक है, क्योंकि शानदार अभिनेता, सुरीले गायक, उम्दा निर्माता निर्देशक, कुशल पटकथा लेखक और बेहतरीन संगीतकार के तौर पर किशोरदा को एक कंप्लीट आर्टिस्ट कहा जा सकता है। चाहे दर्द भरे गीत हों या रोमानियत से भरे प्रेम गीत, हुल्लड़ वाले जोशीले नगमे हों या संजीदा गाने, उनकी आवाज ने हर तरह के गीतों को यादगार बना दिया। तभी तो हम कहते हैं सदाबहार किशोर कुमार। मैंने रही FM रेनबो के साथ अगली पेशकश आप तक पहुंचा रहा हूं, किशोरदा की आवाज। अभी आपने फिल्म जो गाना सुना था वो फिल्म याराना से था। अनजान साहब ने शब्द लिखे थे गीत के और राजेश रोशन साहब का संगीत था। अगली पेशकश दिल मेरा किसी ने ऐसा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, 10 और 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

जी हाँ, कार्यक्रम मस्त मुंबई सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। चूंकि आज किशोरदा का पुण्यतिथि है तो आज मस्त मुंबई में हम उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं के गाने सुन रहे हैं। किशोरदा उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने कभी किसी उस्ताद से शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, फिर भी उन्होंने केएल सहगल यानी कुंदन लाल सहगल को अपना गुरु माना। बचपन में वो अपने माता पिता कुंजीलाल और गौरी से गाना सुना करते और उन्हें तंग करते थे। तब उन्हें 25 पैसे

देकर चुप करा दिया जाता था। उनके बड़े भाई अशोक कुमार उन्हें कोई गाना गाने पर 50 पैसे देते और मन्नाडे साहब के गाने गाने पर और सहगल साहब के गाने पर पूरे 1 रुपये मिलते। लेकिन जिस आदमी को जीवन भर पैसे से बेहद प्यार रहा, उसने 1970-1980 के दशक में सुपरस्टार होने के बावजूद सहगल के एक भी गाना को दोबारा गाने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि असली गानों को सहगल की आवाज़ में ही सुरक्षित रहना चाहिए, उन्हें फिर से रिकॉर्ड करना पाप होगा। सबसे छोटे भाई होने के कारण अशोक कुमार, जो सहगल के पहले आने से पहले बड़े स्टार थे, किशोर दा को गायकी से ज़्यादा अभिनेता रूप में काम मिलने लगा। पर उनका दिल तो गायकी में ही था। वो अशोक दा से कहते कि एक्टिंग असली नहीं है, संगीत दिल से आता है, केवल जो दिल से निकलता है वही दिलों तक पहुंचता है। और हमारा FM रेनबो भी यही कहता है, दिल से दिल तक। बने रहिए FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश किशोर दा और आशा भोसले की आवाज़, कब के बिछड़े हुए आज कहाँ आके मिले।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो, फिल्म ब्लैकमेल से एक गाना सुना आपने। राजेंद्र किशन साहब के शब्द थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। किशोरदा की आवाज हमेशा की तरह बहुत ही रूहानी और प्यारी आवाज। किशोरदा अपने अजीबो गरीब व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उनके साथ काम करने का मतलब नाको चने चबाने जैसा था। यही वजह है कि लोग उनके साथ काम करने से बचते थे, लेकिन उनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उनके बिना काम भी नहीं चलता था। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी किशोर साहब से मिलने उनके घर आए, लेकिन वॉचमैन ने उन्हें दरवाजे पर से ही लौटा दिया। ऐसा किशोरदा के ही कहने पर हुआ था। दरअसल किशोरदा बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए एक शो किए थे, उसने उनके पूरे पैसे नहीं दिए। गुस्से में आकर किशोरदा ने अपने गेटकीपर से कहा कि कोई भी बंगाली बाबू अगर घर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे, गेटकीपर ने उन्हें वही स्टेज शो का ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया। किशोरदा पैसों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहा करते थे, पैसा उनके लिए सब कुछ था। वो

गाने के लिए बहुत पैसा लेते थे। अपने जमाने के सबसे महंगे गायक थे। उनका गला खराब भी रहे तो भी यदि किसी ने गाने के लिए उन्हें पैसा दे दिया तो वो ठीक हो जाता था। वो उसी गले के साथ बेहतरीन गाना गा देते थे। एक बार उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि देखो, जब हम मरने वाले होंगे तो सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे, तब मरेंगे। कहा जाता है कि जब उनके पास कोई प्रोड्यूसर आता तो सबसे पहले वो ये जानते थे कि साथी गायक कितना पैसा ले रहे हैं। जैसे कि पूछते थे कि लता जी कितना ले रही हैं। यदि प्रोड्यूसर ने बोल दिया कि वो तो 80,000 रुपये ले रही हैं तो वो तुरंत कहते, ठीक है तो फिर मुझे 90,000 दे देना। उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा रहती थी कि प्रोड्यूसर को मुँह मांगी रकम देनी पड़ती थी। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा मेरे FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश आने वाला पल जाने वाला है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: क्या कहा?

107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का यह एफएम रेनबो चैनल है। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। 9:50 हो रहे हैं, कार्यक्रम मस्त मुंबई चल रहा है और मस्त मुंबई में आज हम बात कर रहे हैं। 13 अक्टूबर है और आज ही के दिन किशोरदा का इंतकाल हुआ था 1987 में, तो आज हम किशोरदा को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि किशोर कुमार अलग अलग तरह की चीज़ों का कलेक्शन करने के लिए शौकीन थे। एक बार वह ऐसे ही बाजार चले गए घूमने के लिए, तो वहाँ मसूर की दाल देखकर उन्हें अचानक से मसूरी घूमने का मन हो गया। वहीं उन्होंने तुरंत मसूरी घूमने का प्लान बना लिया। एक बार की बात है, रेडियो की जानी मानी हस्ती अमीन सयानी जी ने बीबीसी को बताया था कि किशोर दा बेहद मज़ेदार और शरारती किस्म के शख्स थे। एक बार की बात है, किशोर कुमार ने इंटरव्यू देने के लिए अमीन साहब के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना इंटरव्यू खुद ही लूँगा। इसके बाद अमीन सयानी साहब को दिए एक इंटरव्यू में किशोरदा ने एचडी बर्मन के साथ पहली मुलाकात की नकल करके दिखाई थी। किशोरदा अपने रिलेशनशिप को लेकर भी खबरों में बने रहते थे। उन्होंने 4 शादियां की थी। उनकी पहली शादी 1951 में एक्ट्रेस रूमा गुहा से हुई थी। उन दिनों किशोर कुमार बॉलीवुड में चर्चित नहीं थे। शादी के 8 साल के बाद सन 1958 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद किशोर कुमार को मधुबाला से प्यार हो गया, जिसके चलते उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर मधुबाला से शादी कर ली। मधुबाला से शादी करने के बाद किशोरदा ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम कर लिया था। किशोर कुमार ने अपने नाम को बदलकर करीम अब्दुल रख लिया। हालांकि किशोरदा के परिवार वालों ने इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा। मधुबाला की मौत के बाद किशोरदा की जिंदगी में योगिता बाली आई। सन 1976 में दोनों ने शादी रचाई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद इस रिश्ते में भी दरार आ गई। सन 1978 में उनका तलाक हो गया। योगिता से तलाक के बाद किशोर कुमार ने साल 1980 में लीना चौधरी से शादी की। लीना जिसे उसके 4th शादी थी, जिससे उनके एक बेटा सुमित कुमार हैं। लीना और किशोरदा की उम्र में लगभग 21 साल का अंतर था। किशोरदा कंप्लीट तो आर्टिस्ट तो थे ही, हम जानते हैं उनकी आवाज़। वो तरह तरह की आवाज़ निकालते थे, चाहे निजी जीवन हो या पेशेवर जीवन। उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिया, हम उनकी मिसाल देते हैं। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। अगली पेशकश एक से बढ़कर एक गीत आप तक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश है FM रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इनके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। समाचार में आगे, मुंबई के जनरल पोस्ट ऑफिस में कल राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डाक टिकटों की प्रदर्शनी, विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समाचार में आगे, खेल। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आज ओंडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन यंग से खेलेंगी। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। बने रहें अगला कार्यक्रम के लिए, और अगला कार्यक्रम पेश होने जा रहा है, नमस्ते भारत।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: ladka ladki hai barabar to puchna kyun
2: PCPNDT kanoon ke vibhin pravdhanon ke तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
4: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
3: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
4: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
3: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
4: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

जी हाँ, कुछ ना कहो। कार्यक्रम नमस्ते भारत सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। 10:21 हो रहे हैं। अभी जो गाना हमने आपको सुनाया, गाने के बोल थे कुछ ना कहो। बहुत ही खूबसूरत सा ये ट्रैक 1942 लव स्टोरी से हमने लिया था। कुमार सानू साहब की आवाज़, जावेद अख्तर साहब के लिखे बोल और आर डी बर्मन दा का संगीत। आर डी बर्मन साहब का संगीत तो एकदम कमाल के होते ही थे। और ये जो मूवी थी 1942 लव स्टोरी, ये उनके अंतिम दिनों की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक रही थी। हालांकि इनकी कामयाबी का स्वाद चखने के लिए तब तक बर्मनदा नहीं रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, फिल्मकार, गीतकार, संगीतकार, कहानीकार, ये सब कला जो है ना, अपने आप को अमर करने की छोटी सी कोशिश है। अगली पेशकश हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं, कुमार सानू की आवाज़, उसी फिल्म से हमने लिया है ये गाना। बहुत ही खूबसूरत गाना, और कहा जाता है कि इस गाने में कुमार सानू ने जैसे वर्ड को जितने बार भी गाया, बिल्कुल अलग अलग तरीके से गाया, अलग अलग अंदाज में उसका उच्चारण किया। तो आप जरूर सुनिए और सुन के गौर कीजिए कि क्या जो ये जैसे वर्ड है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कैसा, और ये जैसे वर्ड जो है वो क्या आपको भी महसूस हो रहा है कि वो अलग अंदाज में हर वर्ड्स को गाएं, हर जैसे को। सुनिए जरूर, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

कार्यक्रम नमस्ते भारत सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। 10:35 हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक नगमा हम आपको सुना रहे हैं। अभी आपने सुना फिल्म ये दिल आशिकाना से कुमार सानू की आवाज, ऐसा लगता है जैसे आई एम इन लव। और यकीन मानिए दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे हम सफर, कि जब आप प्यार में होते हैं ना तो आप बेहद खूबसूरत लगते हैं। प्यार इंसान को इस कदर बना देता है कि आप, किसी ने कहा है कि मुझे प्रेम में डूबी हुई स्त्री बुद्ध, मुस्कुराती बुद्ध जैसे मालूम पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ आज जिक्र करना जरूरी है कि हमारे साथ नमस्ते भारत और मस्त मुंबई दोनों ही कार्यक्रम में जो हमारे श्रोता जुड़े हैं, लगातार हमारे नियमित श्रोता हैं, विजेंद्र घटोल जी अकोला से हैं। वो लिख रहे हैं कि नमस्ते भारत, बहुत बढ़िया हैं। धन्यवाद विजेंद्र घटोल जी, अकोला से हैं आप। और साथ ही साथ अनुग्री वर्मा जी लिख रही हैं कि स्वर्गीय महान पार्श्व गायक अभिनेता किशोर कुमार जी का आज स्मृति दिवस है, तो उसमें के साथ ही वो कुछ फरमाइशें भी लिख के भेजी हैं। मेरे महबूब कयामत होगी, तो ये गाना तो हमने प्ले नहीं किया था, आगे ज़रूर प्ले करेंगे आपके लिए जैसे ही मौका मिलता है। वैदेही लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग आरजे रविशंकर जी, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी लिख रही हैं कि गाने बहुत पसंद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा जी जुड़े हुए हैं, और सुजाता आंगरे डोंबिवली से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फरमान साहब जिला मुरादाबाद ग्राम दुलारपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान साहब जुड़ चुके हैं। उसके बाद फिरोज सिग्नपुरिया जी हैं, बाबा दादर से हैं, और सूर्यकांत संभार संवादे कराट से हैं। दीपा पालकर जी हमारे नियमित श्रोता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। साथ में विक्रम आठवले जी भी जुड़े हुए हैं बल्कि, और पंकज मोहट जी ये लिख रहे हैं कि किशोर कुमार पे जो आपने मस्त मुंबई कार्यक्रम किया वो बड़ा ही कमाल का था। तो बने रहिए सर, एक से एक गाने आपको सुनाएंगे। अगली पेशकश आप तक हमने लिया है फिल्म गदड़ से, उदित नारायण साहब की आवाज़, मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, सुनिए।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Cosmo Anandotsav Deposit Scheme.
2: Tenure, interest rate और ब्याज के options चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से.
1: Monthly ब्याज के लिए 445 दिन, quarterly के लिए 446 दिन और cumulative ब्याज के लिए 447 दिन.
2: Deposit tenure के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक.
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए.
2: Cosmo Anandotsav Deposit Scheme. ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें.
1: Cosmos Cooperative Bank. जीवन करें समृद्ध.

जी हाँ, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। 10:52 हो रहे हैं, कार्यक्रम नमस्ते भारत में बस एक गाने की और यहाँ पर गुंजाइश रह गई है, तो अगली पेशकश तो हम आपको ज़रूर अब तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी जो हमने आपको गाना सुनाया था, ये थी फिल्म धड़कन से उदित नारायण, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज़, समीर साहब के लिखे बोल और नदीम श्रवण साहब का संगीत। जी हाँ, नमस्ते भारत की जैसा कि हमने कहा कि बस एक गाने की और गुंजाइश रह गई है, तो बस ये गाना हमने लिया है फिर बताल से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़, एआर रहमान साहब का संगीत और गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, ताल

बेहद ही म्यूजिकल फिल्म थी। लेकिन 10:52 हो रहे हैं तो मैं नमस्ते भारत का सिलसिला इसी गाने के सहारे आपको छोड़ करके जाना चाहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इसके बाद आरजे आदित्य जी हाजिर होंगे कार्यक्रम ब्रेक फ्री लेकर के। मिलेंगे हम, मैं यानी रविशंकर, किसी न किसी मोड़ पर जरूर आपसे मिलूंगा आकाशवाणी के स्टूडियो से किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर के। बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। छोड़े जा रहा हूँ आप तक ये नगमा, उदित नारायण और अलका याग्निक की प्यारी आवाज, ताल से ताल मिला और मिलाते रहिए ताल।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, प्रातः के 11 बजे और आप सुनिए हिंदी मुख्य समाचार। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले में पूर्व पंचवटी स्थित राम तीर्थ यानी रामकुंड में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 दिवसीय धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की शुरुआत 30 अक्टूबर को ग्राम शोभा यात्रा से होगी, जबकि 31 अक्टूबर को दोपहर 12:02 पर सिंहस्थ महाध्वज की स्थापना और ध्वजारोपण किया जाएगा। मुंबई में समुद्र से कचरा हटाने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने ससून डॉक और जमशेद जी बंदर के क्षेत्रों में 2 अतिरिक्त मानव रहित नौकाएं तैनात करने को मंजूरी दी है। बिजली और सौर ऊर्जा के क्षेत्र से चलने वाली ये नौकाएं रिमोट से नियंत्रित होंगी और समुद्र से प्लास्टिक सहित अन्य कचरा एकत्र करेंगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शहर के उपनगरों में आसमान साफ रहेगा, कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: ग्यारह बजकर एक मिनट और 56 सेकंड का वक्त, और बोलते बोलते ही 11:02 भी हो जाएंगे, और आपका स्वागत करने के लिए हम हाजिर हैं। आपके दिल की आवाज आदित्य आपके साथ, और ब्रेक फ्री में लुत्फानंदोज होना शुरू हो चुके हैं आप हमारे साथ। तो ब्रेक फ्री में क्या है खास बताएंगे आपको, लेकिन इस खूबसूरत से गाने के बाद जो मुसाफिरी की बात करता है, जो घूमने की बातें करता है, जो यात्राओं की बातें करता है, और जो कहता है कि मुसाफिर हो यारों,

11:05 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ और ब्रेक फ्री सुन रहे हैं आप, जहां बात करते हैं कुछ जंजीरों को तोड़कर एक नई राह बनाने की। और ऐसी ही राह हम बनाने वाले हैं अगले एक घंटे। कैसे? कुछ किताबों के जरिए। कुछ ऐसी किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, जो आपका सोचने का तरीका बदल सकती हैं, जो आपको एक नई दिशा में ले जाने के लिए उत्सुक बना सकती हैं आपको। तो उन्हीं में पहली जो किताब है, एक्चुअली एक बार हमने और आपको ऐसी ही किताबों से रूबरू कराया था, लेकिन इस तरह की किताबों की फहरिस्त बहुत लंबी है और इनको ज़िंदगी में जितना भी शामिल कर लिया जाए कम है, क्योंकि हर किताब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सिखाती है। अब इतनी भूमिका के बाद हम डायरेक्ट किताब पर आते हैं और अगली किताब क्या है, बल्कि इस प्रोग्राम की जो पहली किताब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की लिखी हुई किताब है। और ये किताब हमें बताती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा धमाका करना पड़ेगा, जबकि असल खेल जो है ना रोज़ के छोटे मोटे फैसलों का होता है। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बना लें तो साल के आखिर में आप अपने पिछले वजूद से 37 गुना आगे निकल जाएंगे। इंसान अपने गोल्स की बुलंदी से नहीं जीतता, बल्कि ये अपने सिस्टम से, अपने खोखलेपन से गिरता है। नतीजा बदलने के लिए आप उसके चक्कर में मत पड़िए कि मंजिल कैसे आएगी। आप बस अपनी पहचान और अपनी आदतों को बदलिए। रोज एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी चट्टान, एक मजबूत इरादे के साथ आप अपना मुकद्दर बना सकते हैं। ऐसा कहना है एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर का। और कहना तो कुछ ये गीत भी चाहता है, वो क्या, इस गीत के दर्शन में चल के समझते हैं। मुकेश साहब की आवाज है और फरमाते हैं कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की किरण पास बुलाए।

0: के समक्ष कुछ किताबें जिनका जिक्र करके हम उस सोच में जाएंगे जिस पर शायद एक पर्दा सा पड़ा था या जिस पर हमने कभी विचार नहीं किया था या जिस थॉट से हम कभी गुजरे नहीं थे। तो इसी सिलसिले में अगली किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई फ्रेंकल की किताब है और ये फरमाते हैं कि नाजी कैंपों की वो खौफनाक यातनाएं जहां सांस लेना भी मौत को दावत देना जैसा था, वो वहां से ये किताब निकाल कर उसकी कहानी लेकर आते हैं और उस किताब को रचते हैं। और फ्रेंकल कहते हैं कि जब तक इंसान के पास जीने की कोई वजह नहीं होती, एक वाई नहीं मौजूद होता है, वो किसी भी तरह के दर्द और तकलीफ यानी हाउ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपसे आपकी आजादी, दौलत और कपड़े तक छीने जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में आपकी सोच और रवैया चुनने की आखिरी इंसानी आजादी कोई किसी से छीन नहीं सकता। जिंदगी कभी भी किसी से ये नहीं पूछती कि आपको क्या चाहिए, बल्कि हर लम्हा जिंदगी हमसे पूछती है कि इस मुश्किल का आपका या इस मुश्किल का आपके पास जवाब क्या है। है ना ये कमाल की बात? तो पूरी बात समझने के लिए आप इस किताब का रुख कर सकते हैं और हमने आपको इस किताब के सार से रूबरू करवाया। फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक खूबसूरत सा गाना और फिर लौट कर आएंगे, तो हमारे और आपके बीच बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुनते रहिए और ये मोहब्बतों भरा साथ यूं ही बना रखिए। सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो और अपने दिल की आवाज आदित्य को।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

ग्यारह बजकर 23 मिनट का वक्त और ब्रेक फ्री में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। और बात आज कुछ ब्रेक फ्री हो जाने की और कुछ बनी बनाई सोच से आगे निकल जाने की, और ऐसी ही बातों के सिलसिले में हम लेकर आए हैं आप

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।

जी 11:23 का वक्त और बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारी बातें हम तक पहुंच रही हैं और जो लोग हमें अभी सुनना शुरू कर चुके हैं और जो अपनी बातें फरमा रहे हैं उनके नाम हम आपको पढ़ के सुना देना चाहते हैं। तो हमारे पास वैदेही जी का गुड मॉर्निंग आ गया है।

और जी आपने एक किताब का जिक्र सुना और विच इज सेकेंड बुक ऑथर सेकेंड या फर्स्ट एक्चुअली पहली तो आपने लिख दी है और दूसरी जो किताब जिनका जिक्र किया था विक्टर ई फ्रेंकल की किताब थी मैन सर्च फॉर मीनिंग तो इस किताब का जिक्र आया था और आगे चलते हैं हमारे पास अशोक पाटिल जी का गुड मॉर्निंग आ गया है पंकज मोहन जी भी कुछ बात फरमाते हैं और लिखते हैं कि किताब स्पेशल कार्यक्रम बहुत बढ़िया रुस्ते अच्छा शुक्रिया आप तारीफ कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का दादर से मैसेज आ गया है हमारे पास संजय दर्शन जी मैसेज करते हैं प्रमोद जी का मैसेज आ गया है दीपा पालकर जी और शंकराचार्य जी का मैसेज आ गया है शुभ लक्ष्मी जी का यश शिंदे जी का विजेंद्र जी का राकेश माथुर जी का और रियासत हुसैन साहब का आप सभी के मैसेजेस हमारे पास दर्ज हो चुके हैं बहुत शुक्रिया आपका मैसेज भेजने के लिए एक बेहद खूबसूरत सा गाना आप तक पहुंचाते हैं और फिर किताबों का सिलसिला एक बार फिर से हमारे आपके दरमियान जीवंत हो उठेगा सुनते रहिए ये मोहब्बतों भरा साथ यूं ही बनाए रखें

0: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।
1: मक शुरू करो या इन्वेस्टिंग सा धड़ा।

जी ब्रेक फ्री में लत फुटा रहे हैं आप कार्यक्रम ब्रेक फ्री का, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। हालांकि ऐसा बोलना चाहिए कि ब्रेक फ्री में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, और बातें कुछ ऐसी जो आपको ज़िंदगी का एक नया रुख दिखाएं, एक नई दिशा दिखाएं, एक नया डायमेंशन दिखाएं। तो जी तीसरी किताब जो है वो बहुत चर्चित किताब है, आपने शायद सुनी भी होगी, पाउलो कोएलो की ये किताब है। इस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट, और हिंदी में भी उपलब्ध होती है ये अल्केमिस्ट के नाम से, और भी दूसरी लैंग्वेजेस में, शायद मराठी में भी है। तो इसमें पाउलो कोएलो फरमाते हैं कि अपने ख्वाबों की तलाश में भटकना दरअसल जिंदगी का सबसे हसीन सफर है। एक गड़ेरिए की कहानी के जरिए कोएलो जिंदगी की सबसे सादा और गहरी हकीकत को बयां करते हैं। जब आप पूरे दिल से किसी मकसद को पाने की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ये एक फिल्म का डायलॉग भी है कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है ना? फिल्म का नाम भी याद आ गया होगा आपको, ओम शांति ओम। तो वो भी ये बात फरमाते हैं कि हर खजाने की तलाश सात समंदर पार भटकते हैं, जबकि वो हमारे दिल में या दिल के किसी कोने में वो दफन हो रहा है। दिल की धड़कनों और कुदरत के इशारों को पहचानना होता है, और फिर देखिए रास्ते में आने वाले डर

सिर्फ ये देखने आते हैं कि आपका इरादा कितना मजबूत है, कितना पक्का है, और फिर जब देखते हैं वो कि आप उन सारी चीजों से डरते नहीं हैं, उन सारी चीजों से पीछे नहीं हटते हैं, तो फिर वो मुश्किलें भी हार जाती हैं। और फिर वो एक शेर भी है ना कि मेरे गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में थकन ना पाई तो बेचारे थक गए हैं।

0: ब्रेक फ्री में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, और बातें कुछ किताबों की जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दें और आपको ब्रेक फ्री कर दें। तो ब्रेक फ्री में उसी अंदाज़ की बातें, उसी तरीक़े की बातें और उन्हीं तरीक़ों की किताबों की बातें हो रही हैं जो आपको ज़िंदगी में एक नई दिशा दे सकती हैं। तो उसी सिलसिले में जो चौथी किताब है वो है द फोर एग्रीमेंट्स, डॉन मिगुएल रुइज़ की लिखी हुई ये किताब है। और फरमाते हैं वो कि हम सब जो है ना वो समाज के बनाए तंग दायरों और बेबुनियाद उसीलों के कैदी हैं। और फिर उसके आगे वो कहते हैं कि प्राचीन तोलतेक हिकमत पर मबनी ये किताब जिंदगी को आसान बनाने के चार सीधे मंत्र देती है। और वो कौन से हैं? अपनी जुबान के पक्के रहिए, किसी भी बात को ज़ाती तौर पर मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिए, और कभी भी खुद के अंदाजे और धारणाओं को मत गढ़िए, और हमेशा अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश कीजिए। दुनिया में आधा जहर सिर्फ इसलिए फैलता है क्योंकि हम दूसरों के कहे या उनकी बातों को अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, उनको भुला बैठते हैं और मुश्किल वहीं से शुरू होती है। तो अब गांठ बांध लीजिए इन चार बातों के लिए और अंदर से या अंदर के शोर और बेचैनी को अपने आप ही खत्म होने का रास्ता दीजिए, है ना? तो ऐसा ही होगा जब आप इन चारों बातों पर अमल करेंगे और इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर चीजें बदलती हुई दिखेंगी आपको। बदलती हुई तो चीज़ें यहाँ भी दिख रही हैं, बदलते दौर के गाने भी हम आपको सुनवा रहे हैं। और एक गाना और ऐसा ही खूबसूरत सा गाना सुनवाते वाले हैं हम आपको, उसके पहले एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर उस खूबसूरत से गाने से आपको जोड़ते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
3: लड़का लड़की है बराबर तो पूछना क्यों?
4: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

जी 11:49 का वक्त और बहुत कम वक्त इस प्रोग्राम में हमारे और आपके दरमियान, लेकिन खैर जितना भी है काफ़ी है। और अगली किताब की तरफ रुख करते हैं, और अगली किताब है डीप वर्क, और ये लिखते हैं कैल न्यूपोर्ट। और इस किताब में वो फरमाते हैं, बहुत ही आसान सी बातें, हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में गौर करें तो इन सारी बातों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इस किताब में इन सारी बातों को विस्तृत तौर पर दर्ज किया गया है, तो आप उस किताब से वो बातें समझ ही सकते हैं। लेकिन उसका जो लबोलुआब है, उसका जो सार है, उसकी जो संक्षिप्त व्याख्या है, वो हम आपको सुना देते हैं। तो न्यूपोर्ट साहब फरमाते हैं कि नोटिफिकेशन स्क्रोलिंग और जल्दी जवाब देने के सतही दौर में सबसे नायाब हुनर है तवज्जो, यानी कि ध्यान। किसी काम को बहुत ही तवज्जो के साथ, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर के साथ करना, उसमें डूब के करना। और इसके बाद न्यूपोर्ट बताते हैं कि घंटों उंगलियों को चलाने से बड़ा कोई काम नहीं होता, बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता उसके बाद। और फिर ऐसा होता क्यों है, जब आप बिना किसी भटकाव के पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ किसी भी मुश्किल काम में डूब जाते हैं, तब कोई शाहकार जन्म लेता है, यानी कि बहुत बड़ा कोई ऐसा काम आप कर जाते हैं, बस सिर्फ एक उस काम में पूरी शिद्दत के साथ डूबने भर से। और फिर कम वक्त का गहरा ध्यान, पूरे दिन की बेमकसद मसरूफियत और उन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा वजनी होता है। अगर हम भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को सुकून से, ठहराव के साथ, गहराई से किसी काम में शिद्दत के साथ लगाना होगा। बस इतना ही करना होता है किसी काम को करने के लिए। किसी भी काम में आप अगर इतनी शिद्दत के साथ, इतनी गहराई के साथ डूब जाएं, तो देखिए फिर वो काम कैसा होता है। और जब वो काम, वो शाहकार साकार हो जाएगा, फिर देखिए आपकी जिंदगी में आप कह उठेंगे कि ऐ जिंदगी गले लगा ले।

जी, इस गाने की बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी होगी। इसका मतलब कि अब डायरेक्ट आप गाने से जुड़ेंगे और हम आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं और एक बेहद खास प्रोग्राम में आपसे म्यूजिक कैफे में फिर से मिलेंगे। हालांकि आधे घंटे की ही हमारी मुलाकात होगी, उसके बाद 12:30 बजे से आप एक NCERT का एक स्पेशल प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनेंगे। और फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, एक समाचार के अंतराल के बाद फिर से आपसे रूबरू होंगे।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, अपराह्न के 12 बजे और आप सुनिए FM हिंदी मुख्य समाचार। भारत ने मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आने वाले आतंकवादी कृत्यों को इन अपराधों की रोकथाम और दंड संबंधी प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सभा के दायरे में लाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति के में भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के परामर्शदाता आर मिथिले ने कहा कि इस मुद्दे को प्रस्तावित सभा के ढांचे के अनुरूप संबोधित किया जाएगा, माफ कीजिएगा, किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF ने प्रतिमान रूप में 2026 के लिए औसतन $95.74 प्रति बैरल अनुमानित उच्च वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों की बात कही थी, जो राजकोषीय मार्जिन के लिए लगातार एक बाधा बनी हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय वकीलों और व्यापारियों की उन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिनमें मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा SOP के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के विरोध प्रदर्शनों को विनियमित करने का अनुरोध किया गया है। मध्य दिल्ली में विभिन्न मुद्दों को लेकर कई विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों में गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल दिल्ली में दोनों राज्यों के गन्ना किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इसी के साथ ये मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आप सुनते रहिए 107.1 आकाशवाणी FM।

एक छोटे से अंतराल के बाद आप सबका फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है आपके अपने प्रोग्राम म्यूजिक कैफे में। अभी से कुछ वक्त पहले जब हमारी एक मुलाकात हुई थी तो हमने आपको एक मोहब्बत की दास्तां से लुत्फंदोज कराया था, और वो दास्तां थी दिवाकर और रोशनी के बीच घटती एक मोहब्बत की दास्तां। उनके रिश्तों में आई कुछ दूरियां और कुछ नजदीकियां, कुछ नोकझोंक, और फिर एक मोहब्बत का रास्ता दरियाफ्त करती हुई, एक मोहब्बत का रास्ता खोजती हुई वो दास्तां किस तरह से आगे बढ़ती है, इन बातों के आसपास उसमें कुछ बातें आपने सुनी थी। आज उसी दास्तां से आप फिर से जुड़ेंगे, और इस दास्तां की खासियत यह है कि आप कहीं से भी इसको सुनना शुरू करें तो वो आपको उतना ही कनेक्ट करती है। 12:04 का वक्त, आप म्यूजिक एफएम लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। एक बेहद खूबसूरत सा गाना, एक बेहद खूबसूरत सी आवाज में इसको सुनिए, और उसके बाद जब लौटेंगे तो उस दास्तां से आपको लुत्फंदोज कराएंगे। शुक्रिया आपका।

जी तो म्यूजिक कैफे में लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ और एक दास्तां से आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये दास्तां है रोशनी और दिवाकर के बीच घटती हुई कुछ तकरार कुछ मोहब्बत की दास्तां। तो एक वाकया यूं है कि रोशनी और दिवाकर के बीच अक्सर छोटी मोटी नोकझोंक होती और फिर उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाती और फिर दुगनी मोहब्बत की इंटेंसिटी लिए दोनों दोबारा साथ भी आ जाते। अब जब वो साथ आते तो उनकी मोहब्बत में एक नई सी खुमारी होती, जैसे उन्हें इस बात का पता हो कि उनका उनका दिल एक दूसरे के बगैर लगने वाला नहीं और ये शेर उनके दिल पर छपा हो। अक्सर वो शेर शायरी में बात करते अपने हर्फ को अपने अल्फाज को अपने शब्दों को अपने एहसास को शेर शायरी में बयां करते और फिर ये शेर दोनों के हालात जो एक से थे उनको बयां करता। वही बेकरारी उधर भी थी, यानी रोशनी के दिल में भी थी जो दिवाकर महसूस कर रहा था, लेकिन दिवाकर ने पहले इस हालात की खुमारी को जुबां पर लाना बेहतर समझा और एक शेर कहा कि बिछड़ गए तो उम्र बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। रोशनी की कैफियत भी ऐसी थी। ये शेर सुनकर वो तंग रह गई, ताज्जुब से भर गई कि उसके हालात को दिवाकर ने बिल्कुल ठीक ठीक कैसे बयां कर दिया। वो ओवरवेल्म थी और पर थी तो आखिर लड़की। वो तमाम खुशी के बाद उस एहसास को सिर्फ अपनी आंखों से जाहिर कर रही थी और बॉडी लैंग्वेज में वो वही वाली लैंग्वेज थी कि आए हैं बड़े इस भाव को जाहिर करने के साथ। अच्छा, लड़कियों की एक खासियत भी होती है, जब उनके सामने कोई मोहब्बत से सरेंडर होता है, समर्पित भाव से उनके सामने आता है ना, तो उन्हें अच्छा लगने के साथ साथ वो फीलिंग भी आती है कि इसे और लंबा खींचना चाहिए, अपने आशिक को थोड़ा और तड़पाना चाहिए। इसी फीलिंग को महसूस करते हुए और इसी फीलिंग के साथ इन सारे भाव को रोशनी ने दिवाकर को लगभग चढ़ाते हुए और इसी गजल के एक शेर में इस बात को लगभग कंफर्म भी करते हुए कि क्या वाकई में ये बात है, तो भास्कर ने क्या कहा था, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अब रोशनी ने क्या कहा, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना। मुस्तकिल यानी कि स्थिर, परमानेंट। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल उधर लगेगा नहीं। अब इस बात के बाद दिवाकर पर क्या बीती उसके बाद, इस गाने के बाद।

0: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन, ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, टेन्योर 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

12:19 का वक्त और आप लतवंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ म्यूजिक कैफे में। म्यूजिक कैफे में एक मोहब्बत की दास्तां सुन रहे हैं आप, दिवाकर और मोहब्बत की दास्तां। दिवाकर ने जब ये शेर फरमाया कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अब रोशनी अवाक थी और ये शेर सुनकर दंग रह गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके हालात को दिवाकर ने बिल्कुल ठीक ठीक कैसे बयां कर दिया। लेकिन वो थोड़ी सी दिवाकर को चढ़ाना चाहती थी, थोड़ा सा उस कैफियत का मज़ा लेना चाहती थी, उस मोहब्बत के एहसास को और जीना चाहती थी और चाहती थी कि दिवाकर इसमें और डूब जाए। इसलिए दिवाकर को लगभग चढ़ाते हुए उसने कहा कि हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल उधर लगेगा नहीं। अब दिवाकर फिर ताज्जुब में कि जैसे उसकी मोहब्बत का असर रोशनी तक पहुंचा ही नहीं, उसका दिल बैठ गया और उसे ख्याल आया कि किसी का दिल इतना जख्म नुमा, इतना जख्म से लबरेज, इतना जख्म से भरा हुआ कैसे हो सकता है कि इतनी मोहब्बत में डूब कर अपनी बात रखने पर भी असर ना हो। फिर उसने जब गहरे उतर कर सोचा तो माजरा समझ आया कि रोशनी का अंदाज है मोहब्बत जाहिर करने का। वो किसी भी बात को बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करती, ना कोई भी बात बिल्कुल डायरेक्ट खुलकर जाहिर करती। मीठी नोकझोंक और ये सारी चीजें थोड़ी बहुत तलखी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा रहती और दिवाकर भी अब बखूबी समझ चुका था कि रोशनी का ये एक खास अंदाज है मोहब्बत जाहिर करने का। अब जो रोशनी का वो शेर दिवाकर को याद आ रहा था कि हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना होता, हमें पता है तेरा दिल उधर लगेगा नहीं, दिवाकर ने भी उसी गजल के उसी तरह के शेर से जवाब दिया और कहा कि एक ऐसा जख्म नुमा दिल करीब से गुजरा है, कि ऐसा जख्म नुमा दिल करीब से गुजरा है, दिल उसको देख के चीखा ठहर लगेगा नहीं,

0: 12:25 का वक्त और 12:30 से आप सुनेंगे NCERT का आधे घंटे का एक खास प्रोग्राम और हमारी मुलाकात होगी समाचार के अंतराल के उस पार यानी के 1 बजे के बाद और तब तक आपको एक बेहद खूबसूरत सा गाना सुनाते हैं और उसके पहले ये जो दास्तां जहां तक पहुंची थी उसको एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंचाते हैं और अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो इस दास्तां को अगर आपको पसंद आ रही होगी तो हम व्हाट्सएप पर आप अपनी रिएक्शंस भेज सकते हैं और अगर बहुत सारे अच्छे रिएक्शंस आए तो इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर इसको यहीं पर अंजाम दे देंगे। तो बात कुछ यूं है कि अब जब दिवाकर ने इस शेर को बोला कि कैसा जख्मनुमा दिल करीब से गुजरा कि उसको देखकर चीखा ठहर लगेगा नहीं, इस शेर के बाद दिवाकर के जहन में सवाल वहीं के वहीं थे। फिर उसने दरियाफ्त करना बेहतर समझा, उसने उसकी कन्फर्मेशन जाननी बेहतर समझी कि उसे पूछा तो जाए एटलीस्ट। तो उसने कहा भी कि मोहतरमा, हमने देखा है कि आप हमारी बात को जरा तवज्जो नहीं देती हैं, जरा ध्यान से नहीं सुनती हैं, मतलब आप जरा ध्यान दें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब रोशनी अपनी इस आदत से अच्छे से वाकिफ थी, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जहन में एक ख्याल को सोचा और फिर मानो उस ख्याल को दिवाकर ने पढ़ लिया हो और अब रोशनी को इस सवाल का कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही था। तो उसने सहारा लिया फिर एक शेर का और दो लफ्ज आएंगे, तवज्जो यानी कि अटेंशन और ताल्लुक यानी कि रिश्ता। तो दिवाकर के इस सवाल पर कि आप जरा तवज्जो क्यों नहीं देती, ध्यान क्यों नहीं देती, तो रोशनी ने कहा कि बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, बहुत तवज्जो ताल्लुक बिगाड़ देती है, ज्यादा डरने लगेंगे तो डर लगेगा नहीं। इसी शेर के साथ फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से विदा, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अपने प्रोग्राम हिट एंड हॉट में।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूं, कभी मैं हूर हूर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक है। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा। और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए, लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं, आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं, पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। या जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं, मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हो और तुरंत आग चाहिए, तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं, एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ, 19वीं शताब्दी में फास्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी, और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं, लेकिन श्रोताओं, उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया, और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई? आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
2: भारत

0: भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ?
4: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
5: फट जाएगा।
4: पीछे हटो, पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल
1: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
6: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
7: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
7: Sir,
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
7: सर,
3: वेल डन आदि, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद एमपी

0: इंपीरियल सर्विस लॉन्सर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लॉन्सर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
0: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
4: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
4: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
4: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का।

0: बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: जी 1:05 का वक्त होता है, ये वक्त आपके मोहब्बतों का शुरू हो जाता है। आपकी तमाम सारी मोहब्बतें हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आ रही हैं, और जो दूसरे लोग अपनी मोहब्बतें हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर नोट करें 8657661071। और जो लोग अपनी मोहब्बतें हम तक पहुँचा चुके हैं उनका बेहद शुक्रिया, और हम सिलसिलेवार ढंग से ऊपर से नीचे के क्रम में नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। चेतन कुमार जी, दीपा पालकर जी, संजय दर्शन जी, यश शिंदे जी, अभिजीत जी, टीडी मल्होत्रा जी, श्याम सुंदर तंगसाली, माफ़ कीजिएगा मैं अगर नाम सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ नाम पढ़ने में दिक्कत होती है, श्याम सुंदर जी, यशवंत जी, प्रमोद जी, विजेंद्र जी, अजय साखरे जी, पंकज मोहत जी, राकेश माथुर जी, वैदेही जी, शुभदा जी, राम प्रजापति जी, विद्यालक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी, फिरोज जी, अंजू जी, अशोक जी, बाबा जी, शंकराचार्य जी, शुभ लक्ष्मी जी, रियासत हुसैन जी, प्रदीप जी, आप सभी का इस्तकबाल है। आप सभी ने हमें बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं और हम सिलसिलेवार ढंग से उन पर चलेंगे और उन पर बातें करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज जो हमारे पास 1:01 के आसपास आया था वो किनका है, वो मैसेज है हमारे पास यश शिंदे जी का, और तमाम सारी खूबसूरत सी बातें भी आप फरमाते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जितना खूबसूरत आपने लिखा है शायद हम उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। आप ऐसा लिखते हैं, एक शख्सियत के बारे में लिखते हैं और अपने अंदाज में लिखते हैं, आप काफ़ी सारे काफिए तुकांत लगाकर लिखते हैं। आप लिखते हैं कि आने वाला पल जाने वाला है, यही रीत इस संसार की है, पर आपकी आवाज़ ही धड़कन हर दीवाने दिल के प्यार की है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आपने हमें जीना सिखाया, रूप तेरा मस्ताना गाकर हर आशिक का दिल बहलाया। मुश्किलों में हिम्मत दी जब गाया रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, और मोहब्बत को मुकम्मल किया देकर नगमे प्यार के। वो साथी रे आपके बिना ये महफिल आज भी अधूरी सी लगती है, आपकी आवाज में वो जादू था जो हर टूटे दिल की दवा बनती है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, पर आपकी यादों की आग कौन बुझाए। मेरे सपनों की रानी का जादू आज भी हर युवा के दिल पर छाए, खई के पान बनारस वाला कहकर आपने जो धूम मचाई, और पल पल दिल के पास गाकर हर धड़कन में जगह बनाई। सुरों के सरताज किशोरदा को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि, ऐसी बातें अर्ज करते हैं यश शिंदे साहब। और इसी के साथ इन्होंने कितनी अहम जानकारी भी दी कि किशोरदा की एक पुण्यतिथि है आज, एक ऐसे सिंगर जो जब स्क्रीन पर हम हीरो को देख रहे होते थे, पीछे आवाज़ जो चल रही होती थी, तो ऐसा लगता था कि हाँ इन्हीं के लिए ही गाया गया है, और वो लगभग हीरो के अंदाज कॉपी कर देते थे उस गाने में। तो ये एक खास बात तो है ही, और हर मूड के वर्सटाइल सिंगर थे, हर मूड के गाने गाने के लिए जाने जाते थे। तो उसी तरीके का आपने एक गाने की फरमाइश हमें भेजी, और हमें लगता है कि इस गाने के साथ इस प्रोग्राम के इब्तिदा

भी की जाए तो ये शानदार होगा। और आपका इसी दरमियान धन्यवाद सर भी आ गया है। सर मत बोलिए, हम आपके छोटे भाई जैसे हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी खूबसूरत बातें लिखकर भेजते हैं, इतना सजा कर लिखकर भेजते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत सा गाना ये वादा रहा।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अपनी मखमली आवाज से हर भावना को जीवंत करने वाले आवाज के जादूगर किशोरदा को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। भारतीय संगीत जगत में आपका योगदान अमर और अतुलनीय है। सर सम्राट स्वर्गीय किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसी बातें आप लिखकर भेजते हैं। आपका नाम है संजय दर्शन जी और आपने बोला है कि आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। देखिए हमने कितने सारे नमस्ते और आपके हर एक मैसेज पर इंडिविजुअली कोई ना कोई इमोजी इस्तेमाल करके रिप्लाई किया है, लेकिन हाँ कुछ टाइप नहीं कर पाए क्योंकि इस दरमियान थोड़ा सा वक्त कम मिला। और तमाम सारे लंबे लंबे मैसेजेस हैं, हम चाहते हैं कि सबको पढ़ लें। सबकी पूरी पूरी बातें तो करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम हम पढ़ के उनका जो इन शॉर्ट जो मैसेज निकलता है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो शॉर्ट मैसेज है लेकिन हमारी मेहनत नज़र अंदाज हो जाती है। प्लीज़ अच्छा देखिए, जब हम आपकी बात कर रहे हैं तब भी आप ऐसा मैसेज लिखकर भेज रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हर नाराज़गी आपका हक है। अगर आप नाराज़ हो रहे हैं इसका मतलब कि आप हमें अपना मानते हैं, हम तो ऐसा मानते हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरत से गाने का जिक्र किया और हम चाहते हैं कि इस गाने को आपको बगैर देरी सुनवा दिया जाए क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरता हुआ। लेकिन जो भी वक्त है आप इन्हीं मोहब्बतों के साथ हमारे साथ गुजारिए, आप ज़रूर एक नई अनुभूति से भर जाएंगे। शुक्रिया आपका।

कई सारे मैसेजेस और कई सारी बहुत लंबी लंबी बातें लिखकर लोग भेज रहे हैं। ऐसा ही एक मैसेज हमारे पास संजय दर्शन जी ने पहले भी भेजा था, अब उस मैसेज को कोट करते हुए हमें बताया है कि ये मैसेज बुक्स के लिए था, तो वो भी हम पढ़ देते हैं। जब किताबों से जुड़ी कोई बात होती है तो हम थोड़े से उसके आशिक होकर उन चीज़ों को पढ़ना समझना चाहते हैं। तो आप हमें मैसेज लिखते हैं और कहते हैं कि ये खामोश रहकर भी कुछ बहुत कुछ बोल जाती हैं, समझने वाले के आगे नए संसार लाती हैं। दुकानों पर भले ही धूल में लिपटी नजर आए, मगर जब खुलती हैं तो ज्ञान के का अमृत बहाती हैं। मोटिवेशन जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। आज आपने बहुत अच्छा ब्रेक, अच्छा तारीफ कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अब चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास जो अगला मैसेज भेजा है वो है प्रमोद जी की फरमाइश का, और प्रमोद जी का हमारे पास अभी फ़ोन कॉल भी आया। उन्होंने हमें अपने गाने के बारे में याद दिलाया और अपनी फरमाइश के बारे में याद दिलाया, और आप भी इसी मौके से जुड़ी हुई जिस पर हम आज बात कर रहे हैं उस पर कुछ बातें अर्ज करते हैं। और आप लिखते हैं कि गाने का नाम लिखते हैं और फिर ये लिखते हैं कि आवाज़ क्या लिखते हैं आप, थोड़ा सा मैसेज आपका मिस हो गया जी। किशोर कुमार साहब की पुण्यतिथि पर फिल्म पड़ोसन से ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं आप प्रकाश शिंदे जी को। प्रमोद चिंचोलकर जी उमरी अकोला से आप मैसेज करते हैं। आपने क्या बात लिखी है, आदित्य जी हमारा गाना प्लीज। वाह क्या बात है, अंदाज आपका अच्छा लगा हमें। और साथ ही आप ये भी फरमाते हैं कि अशोक कुमार जी उनकी जन्म जयंती है आज के दिन, तो ये भी एक कोइंसिडेंस है कि आज अशोक कुमार जी की जयंती है और किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि है, तो ये अपने आप में ही एक अजीब सी बात है। लेकिन खैर, तो अभी चलते हैं आपकी पसंद के गाने की तरफ। जो बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने फरमाइश के लिए हमें भेजा है वो हमने क्यों करके रख लिया है, और इस गाने में अदायगी देखिए आप, कैसे संगीत में, कैसे तरन्नुम में अदायगी होती है, गानों में कैसे एक्टिंग की जाती है, उसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा।

0: जी अगले गाने की जो फरमाइश हमारे पास भेजी है पंकज मोहन साहब ने, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, हम बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट आपको उस गाने से जोड़ते हैं, और फिर अभी एक छोटा सा समाचार का अंतराल, और उसके बाद फिर हमारे इस गाने के बाद और समाचार के बाद फिर से मुलाकात होगी।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz Musically yours.
1: एक बजकर 40 मिनट का वक्त और मैंने बोलते ही 41 मिनट भी हो गया और हमारे पास बहुत से खूबसूरत गानों की फरमाइश आ रही है और आज ज़्यादातर लोग किशोर कुमार साहब के गाने सुनना चाहते हैं और उसी फहरिस्त में हमारे पास एक नाम और जुड़ गया है जिनकी फरमाइश बहुत कम बहुत रेयर आती है लेकिन जब आती है तो बहुत खूबसूरत फरमाइश बनकर आती है। ये मैसेज हमारे पास वैदेही जी का और इन्होंने लिखा इफ़ पॉसिबल, तो देखिए हमने उसको पॉसिबल कर दिया है। आपने पूछा तो आपका गाना आप तक पहुंचने के लिए बेताब है। आप सुनिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

जी, 1:45 का वक्त और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी मोहब्बतें पहुंच रही हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनका नाम पढ़ दिया जाए। तो उनमें से गुरमीत सिंह मीता जी का मैसेज हमारे पास साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आया है। जी देखिए, हमने आपका नाम पढ़ दिया। और भी कई मैसेजेस हमारे पास ऐसे हैं, जैसे कि हरजिंदर जी, आप हमें मैसेज भेजते हैं और आप भी कई सारे नामों के साथ मैसेज भेजते हैं। पंजाब से आप हमें मैसेज भेज रहे हैं, जसवीर जस्सी जी, सीता गीता जी, और गांव नथाना पंजाब से आप मैसेज भेजें, किसी भी गीत में आपका नाम शामिल कर लिया जाए, ऐसा आप फरमाते हैं। और अब चलते हैं एक गीत की तरफ, एक गाने की तरफ, जिसकी फरमाइश हमारे पास भेजी है अजय साखरे जी ने। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, ये भी किशोर कुमार का गाना है। आप सुनिए और लुत्फ़अंदोज़ होइए। फ्रॉम रेनबो, दिल की आवाज़, आदित्य के साथ।

0: एक बजकर 51 मिनट का वक्त, और ये वक्त बताता है कि बहुत कम वक्त हमारे आपके दरमियान बचा हुआ है। और इसी बीच हमारे पास एक नाराजगी दर्ज हो गई है, और ये नाराजगी हमको सुनील जंगम जी ने पुणे से भेजी है। और आप तमाम सारी चीजों को जिक्र करते हुए आप ये भी बोलते हैं, देखिए हम शब्दशः आपका मैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, भले ही क्यों ना कितना ज्यादा तलख हो, कड़वा हो, ऐसा, लेकिन हम पढ़ के सुनाएंगे आपको। आप लिखते हैं, कुछ गिने चुने लोगों के नाम और गाने आप शामिल करते हैं। मैंने ऐसा नोटिस किया, ऐसा करना चाहते हैं आप, बहुत दिन से यही हो रहा है, फिर क्यों नंबर देते हो आप और बोलते हो मैसेज करो, आपके पसंद का गाना लगाएंगे। अच्छा देखिए, तो बात यह है ना कि तमाम सारे लोग तमाम सारे गाने भेजते हैं और एक मूड का एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं हम, और उस बीच में उस मूड का गाना अगर चलना ठीक लगता है तो उसको प्ले करते हैं। तो कभी कभी बस ये होता है, उनका क्रम बदलता रहता है, और नए नाम जब भी हमें दिखते हैं तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि उन नए नामों को मौका दिया जाए। जैसे आप हमारी फहरिस्त में पहली बार आए हैं तो आपको हमने देखिए देखते ही नोटिस किया, और आपका गाना प्ले करने के लिए हमने क्यू भी कर लिया है, लेकिन आपका गाना उस मूड का था कि उसको हम जाते जाते प्ले करें, तो इसलिए हमने उसको आखिर के लिए बचा रखा था। लेकिन इस बीच आपके तमाम सारे मैसेजेस, तमाम सारी नाराजगी, तमाम सारे इमोजीज हमारे पास आ गए हैं, तो खैर कोई नहीं, फिर हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हमें चाहते हैं तो आपको हमसे नाराज होने का भी हक है, तो कोई बात नहीं। खैर इसी के साथ हमारे पास फिरोज जी का भी मैसेज आया, आपने भी कई सारे गाने भेजे, उसमें से एक गाना जो बिल्कुल मुख्तलिफ मूड का है, बिल्कुल अलग अंदाज का है, तो जाते जाते वो सुनवाते हैं और फिर उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सुनील जी की फरमाइश का गाना। तो बिना देरी हम आपको सुनवाते हैं दोनों ही गाने, और इसी के साथ हम आपसे विदा भी लेते हैं क्योंकि वक्त हो चला है हमारे चलने का। फिर किसी रोज आपसे यूं ही मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।

0: क्षेत्रीय एकीकरण आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन ले। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलिचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
3: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के

0: प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
1: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में यह बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
2: असम में नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है।
1: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को मेरा। दोस्तों, अगर आपको आज एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी में वापस जाने का मौका मिले तो आप कौन सा दौर चुनेंगे? वो स्कूल के दिन, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों के साथ लंबी लंबी बातें, या फिर किसी खास का इंतज़ार करते हुए बिताए वो खूबसूरत पल? अगर आपके जवाब में 2000 के दशक का जिक्र है तो समझ लीजिए कि आज का शो अभी के लिए है। 2000 के दशक के गानों की बात ही कुछ और थी। रोमांस हो, दोस्ती हो, जुदाई हो या फिर जिंदगी का जश्न, हर मूड के लिए गाना तैयार था। तो चलिए आज यादों की उसी खूबसूरत पिटारे को खोलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, होल्ड इज गोल्ड। मैं हूं आपका अपना आरजे रॉबिन चौबे और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी एफएम रेनबो 107.1 पर, जो है म्यूजिकली योर्स। तो चलिए आज फिर जी लेते हैं वो दौर 2000 के दशक के सुपरहिट गानों के साथ।
1: Icebergs and two. Icebergs.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, पार्टी हो और बॉलीवुड के 2000 के दशक वाले गाने ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वो दौर जब गानों की बीट्स पर पैर अपने आप छिड़कते थे और दोस्तों की महफिल देखते ही देखते डांस फ्लोर बन जाती थी। तो चलिए पुरानी यादों को थोड़ा डांस करवाते हैं और माहौल को बनाते हैं एकदम धमाकेदार। मैं हूं आपका अपना आरजे रॉबिन, FM रेनबो 107.1 पर। तैयार हो जाइए क्योंकि अब बारी है कुछ जबरदस्त पार्टी नंबर्स की।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो दोस्तों, पार्टी के धमाकेदार गानों के बाद अब जरा माहौल को बनाते हैं थोड़ा रोमांटिक, क्योंकि 2000 के गानों के बात हो और प्यार के धुनों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो गाने जिन्हें सुनकर किसी खास की याद आ जाए, चेहरे पर मुस्कान आ जाए और दिल बस उन्हीं खूबसूरत पलों में खो जाए। तो अब सुनते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन रोमांटिक नगमे जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी एफएम रेनबो 107.1 पर। मैं हूं आपका अपना आरजे रॉबिन चौबे।

सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद ही गुड इवनिंग बोल रही हैं और उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। और विजेंद्र घटोल जी भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट, क्योंकि जी हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है कि आप लोगों के लिए ऐसे प्यारे प्यारे गाने बजाऊं। और पंकज महोड़ जी भी को भी अच्छा लग रहा है। और दत्ता केदार प्रशीक बोरकर सॉन्ग्स अच्छे प्ले किए हैं वैसा कह रहे हैं। दीपा पालकर भी कह रही हैं अच्छे प्ले हैं। और फिरोज सिकनपुरिया, काजल कक्कड़, संजय पाटिल, संजय दर्शन, अमित जाधव, परमार जी और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, यश शिंदे, राकेश माथुर, रामदास तेमड़े। चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी ने लंबी ड्राइव तो बहुत की होगी, खुली सड़कें, खिड़की से आती ठंडी हवा, साथ में दोस्तों की मस्ती और कार में प्ले होते आपके फेवरेट गाने। और 2000 के दशक में तो ऐसे गानों की भरमार थी, है ना, जिन्हें सुनते ही घूमने फिरने और कहीं दूर निकल जाने का मन करता है। तो चलिए कुछ ऐसे गाने मैं आपके लिए प्ले करना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं हूँ आपका आर्जे रॉबिन।

0: SPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

दोस्तों, इश्क भी कितना खूबसूरत एहसास है। कभी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बना लेता है, तो कभी चांदनी रातों में किसी की याद बनकर उतर आता है। मोहब्बत की इसी दिलकश दास्तां में, जहां हर धड़कन में किसी का नाम है और हर ख्वाब में किसी का अक्स, पेश है एक नगमा जो दिल की लगन को आवाज़ देता है। और जब यही मोहब्बत चांद के पार तक जाने का ख्वाब देखने लगे, तो एहसासों की इस उड़ान को मिलती है एक और खूबसूरत धुन चांद के बाद। तो आइए इन दो नगमों के साथ महसूस करते हैं इश्क की वो रूहानी कैफियत, जहां दिल भी गुनगुनाता है और ख्वाब भी मुस्कुराते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों कहते हैं मोहब्बत में किसी का चेहरा आंखों में उतर जाए तो फिर हर तरफ उसी का नूर नजर आता है, और जब दिल किसी की चाहत में डूब जाए तो जिंदगी की हर राह उसी की जानिब मुड़ने लगती है। ये इश्क भी अजीब शय है दोस्तों, ये इश्क भी अजीब शय है दोस्तों। कभी किसी की एक झलक दिल को सुकून दे जाती है तो कभी उसी की कशिश हमें उसकी ओर खींचती चली जाती है। तो आइए मोहब्बत की इन्हीं खूबसूरत एहसासों को संगीत के हवाले करते हैं, जहां नज़रों में किसी का अक्स है और दिल में बस उसी की जुस्तजू।

दोस्तों अब समय हो रहा है अंदाज़े बयां को विदा करने का। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद हम आपसे जुड़ेंगे दोबारा 7:10 पर आपके चहेते कार्यक्रम जिसका नाम है हम तुम। और दोस्तों FM रेनबो मुंबई के इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और साथ में मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है robin_chaube। और हम तुम में आज का जो हमारा थीम है, आपको ऐसे गाने की फरमाइश भेजनी है जिसमें दिल शब्द का जिक्र हो, यानी कि दिल किसी भी गाने में आगे पीछे कहीं भी दिल आना चाहिए। तो ऐसे गाने आप हमें भेजिए और एक के बाद एक हम वो गाने प्ले करेंगे आपके लिए। सुनते हैं कुछ लास्ट के दो गाने।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से और मैं लेके आया हूँ आपका फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है हम तुम। और गाने की जो शुरुआत करेंगे आपके चॉइस की वो पल पल दिल के पास किशोर दा की आवाज़ में, और उसके बाद एक और गाना ओ मेरे दिल के चैन। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है तो ये गाना उनके लिए हम प्ले करेंगे। और गाने की जो फरमाइश भेजी है वो मेरे दिल के चैन गाने की संजय दर्शन, अजय साखरे, और पल पल दिल के पास की फरमाइश भेजी है प्रमोद चिंचोलकर, फिरोज सिकनपुरिया, पंकज महोड़।

दीपा पालकर जी की फरमाइश तू ही बता, अलीशा चिनाय और जुबिन गर्ग की आवाज़ में। फिल्म का नाम है था क्रिश 3 और अगला गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, और इसकी फरमाइश की है चेतन कुमार जी ने।

0: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

खिलाड़ी तू नाड़ी का ये गाना इसकी फरमाइश की थी मोहित जी ने और इसे गाया था कुमार सानू जी ने। और बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो मुश्किल हो रही है मुझे कि किसको सिलेक्ट करूं और किसको नहीं, क्योंकि टाइम की बहुत पाबंदी है। हमारे पास केवल 20 मिनट है तो मैं फटाफट गाने प्ले करूंगा और बीच में एक कमर्शियल ब्रेक भी आएगा। तो अगला गाना जो मैं प्ले करने जा रहा हूं वो है दिल में है तू और इसकी फरमाइश की है यश शिंदे जी ने।

0: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: place is heavy.
1: अभी मेरे जाने का वक्त हो रहा है और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और दोस्तों, जिस का मैं फरमाइश पूरा नहीं कर पाया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगले मेरे प्रोग्राम में आप लोगों के गाने के चॉइस मैं ज़रूर पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत पाबंदी होती है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि जितने गाने प्ले हो सके मैं प्ले करूँ। और चलिए, मिलते हैं, बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। एंड Now it's time to turn up the volume and rock with RJ Abhishek on Rock with Jock, featuring some amazing Western music. So stay tuned and listen to FM Rainbow 107.1. I'm RJ Robin Chaube. Take care and bye-bye.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर ना दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भू स्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव

0: लाभ लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
1: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
2: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
3: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
1: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन

के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार बेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैरागुए में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: महसूस करेंगे कि इंसान के जज्बात सदियों बाद भी बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। आइए आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ।

हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश हो ये ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग अपनी परेशानियां दूसरों को बताने से बचते हैं, वो महफिल में हंसते हैं, दोस्तों के बीच खुश नज़र आते हैं, लेकिन अकेले होते ही वही सवाल उन्हें घेर लेता है जिससे वो दिन भर बचते रहे। कभी कभी इंसान इसलिए भी मुस्कुराता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अपने उसकी तकलीफ से परेशान हो। वो अपनी आंखों की नमी छिपाकर दूसरों को तसल्ली देता है और कहता है कि सब ठीक है। मगर किसी की खामोशी को समझने के लिए हमेशा सवाल पूछना ज़रूरी नहीं है। कभी सुकून से सुन लेना, कभी बिना सलाह दिए साथ बैठ जाना, और कभी सिर्फ ये कह देना कि मैं हूँ, अगर बात करना चाहो तो, इतना ही काफ़ी है। इसी एहसास पर एक कुछ अर्ज है कि हंसी के पीछे भी कुछ सिलसिले उदास रहते हैं, हंसी के पीछे भी कुछ सिलसिले उदास रहे, जो सबको हौसला देते थे, खुद वही उदास रहे।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी साहब, FM रेनबो आप सुन रहे हैं 102.6 FM की लहरों पर और इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। प्रोग्राम है रंगे महफिल। और साहब, बचपन की यादें में कितनी अजीब होती थी ना, उस वक्त जिन चीज़ों को हम मामूली समझते थे, बड़े होकर वो सबसे ज़्यादा अनमोल लगने लगी। बारिश में कागज़ की कश्ती बनाना, स्कूल से लौटकर दोस्तों के साथ खेलना और माँ की आवाज़ सुनते घर की तरफ भाग जाना, गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार, इन छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी खुशी थी। तब हमारे पास बहुत ज़्यादा कम चीज़ें थी, लेकिन शायद खुश होने के बहाने ज़्यादा थे। आज सब कुछ है मगर वक्त की कमी है। वक्त की कमी ने हमें कई बार उन छोटी छोटी खुशियों से दूर कर दिया है। बचपन में लौटना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी सादगी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना मुमकिन है। बच्चों के साथ खेल लेना, परिवार के साथ बिना मोबाइल के बैठना या किसी पुराने दोस्त को फ़ोन पर बात कर लेना, कभी कभी ये छोटी छोटी बातें ना दिल को हल्का कर देती हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: और जब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर, और इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है और प्रोग्राम है रंगे महफिल। और साहब, मोहब्बत की अगर बात करें तो मोहब्बत को समझने के लिए हमेशा बड़े वादों की ज़रूरत नहीं होती। कभी किसी की थकान पहचान लेना और कभी उसकी परेशानी को बिना कुछ कहे समझ लेना, और कभी मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थाम लेना, ये मोहब्बत है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार जताने के लिए कुछ ख़ास करना पड़ता है, जबकि कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निभाई गई छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही रिश्तों को और ज़्यादा गहरा बना देती हैं। मोहब्बत सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं है, किसी के साथ ऐसा रिश्ता बनाने का नाम है जिसमें दोनों इंसान अपनी असल पहचान के साथ रह सकें।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: इंतजार कभी अपना एक मिजाज होता है, कभी किसी के आने की खुशी में वक्त गुजरता है, तो कभी एक छोटा सा इंतजार भी बहुत ज्यादा लंबा लगने लगता है, और कहीं तो किसी का फोन आने का इंतजार, किसी पुराने दोस्त से मिलने की उम्मीद, या किसी ऐसे जवाब की कहीं की प्रतीक्षा जो हमारे रिश्ते का भविष्य तय करे। हमारी ज़िंदगी में इंतज़ार कई तरह से आता है, मगर इंतज़ार करते हुए एक बात भूलनी नहीं चाहिए, वो है उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को किसी दूसरे के फैसले पर रोक देना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि रिश्तों में कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर कोई रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की कोशिश से चल रहा है ना, तो उस हकीकत को आपको यकीनन स्वीकार करनी है। कभी इंतज़ार हमें किसी की अहमियत समझाता है, तो कभी ये भी सिखाता है कि हमें अपने लिए भी आगे बढ़ना है। इसलिए हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं खूबसूरत कलाम। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद।

ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो आखिरी मुलाकातें साबित होंगी। हम सोचते हैं कि फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर कभी बैठकर पुराने दिनों को याद करेंगे, लेकिन वक्त हमेशा हमारी इन कहें कि इन यादों, इन योजनाओं के मुताबिक बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए रिश्तों में जो कहना है उसे बहुत देर तक रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी से माफ़ी मांगनी हो तो मांग लीजिए, किसी को शुक्रिया कहना हो तो कह दीजिए, किसी अपने का हाल पूछना हो तो आज ही फ़ोन कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिश्ता हमें हमेशा बचाया जा सकता है। कुछ रिश्तों को कहें कि सम्मान के साथ विदा करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में मायने रखते हैं उन्हें लापरवाही के हवाले बिल्कुल नहीं करना है। गज़ल हमें ये सिखाती है कि इंसान के जज्बात किसी एक दौर तक सीमित नहीं रहते। मोहब्बत हो, बिछड़ना हो या ज़िंदगी के बदलते हालात, हर अनुभव में एक नई समझ होती है।

यह है आकाशवाणी दिल्ली का रेनबो स्टेशन। अब आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। कहा केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पायर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। सभी 7 सदस्य देशों ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। शांति सुरक्षा सहित क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दे पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु के साथ भारत कनाडा व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। आज विदेश

मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को स्थगित करने के सरकार के निर्णय को स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सह अध्यक्षता में पराली प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। संस्कृति मंत्रालय का 3 दिवसीय बृहत्तर भारत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026-27 के लिए पंजीकरण की अवधि 19 अक्टूबर तक बढ़ाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमले की कोशिश की, आरोपी महिला हिरासत में। और भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं, मैं हूं शीतल गुप्ता, आज आपके साथ आपकी होस्ट, और समय हो चला है जीरो आर शो का। सबसे पहले बहुत प्यारे गाने के साथ फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आइए सुनते हैं सबसे पहले ये वाला गाना।

दोस्तों, जिंदगी में कितना कुछ चलता रहता है ना, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। कभी काम की टेंशन, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी किसी अपने से मिलने की खुशी, तो कभी किसी की याद। लेकिन सबके बीच अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो चेहरे को मुस्कान ले आए, दिल को सुकून दे और पुराने दिनों की याद दिला दे, तो फिर क्या बात है। तो चलिए पुराने गाने को याद करते हैं, पुराने अपने यादों को याद करते हैं और सुनते हैं इस गाने को।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तेरा जहर बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त।
2: लाले क्या बताऊं यार, वो जिस जमीन पे पैर रखती है वो जमीन महकने लगती है, और अगर वो अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दे तो ये कुदरत महकने लगती है।

0: आप सुन रहे हैं दिल्ली की आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और जीरो आवर्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत आपकी RJ शीतल को।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है, आइए अब सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया, कहा केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हुई, 7 देशों ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने से करीब 13 लोगों की मौत, ज्यादातर नाबालिग। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक जताया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमले की कोशिश, आरोपी महिला हिरासत में। सूचना और प्रसारण सांसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद 2 दिवसीय भारत दौरे पर है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। संस्कृति मंत्रालय का बृहत्तर भारत पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय

राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 50 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बनाई। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह ओलावृष्टि की संभावना जताई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: शुदाम सुन रहे हैं आकाशवाणी का दिल्ली एफएम रेनबो चैनल और स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 1:03 और 48 सेकेंड और अब वक्त है कार्यक्रम सुहानी रात का और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। कहा, केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पायर के सिद्धांत को अपनाया है। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हुई। 7 देशों ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने से करीब 13 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर नाबालिग हैं। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक जताया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमले की कोशिश, आरोपी महिला हिरासत में है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। संस्कृति मंत्रालय का बृहत्तर भारत पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौरे में जगह बनाई। और मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कुछ ऐसे कार्यक्रम का, भुलाएं ना बने, और मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम भुलाएं ना बने। पता नहीं चला कि क्या वक्त हो चला है स्टूडियो की घड़ी में, 2:05 हो गए हैं और अपने साथियों से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, उनका हाल जानेंगे, अपनी कुछ सुनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आराम आराम से क्यों बातें की जा रही है, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है, एकदम शांत, गलियां शांत, मोहल्ले शांत, सब कुछ शांत शांत है। बात करने के लिए कोई खास वजह तो चाहिए, चाहे कितनी भी शांति हो। तो कभी कभी तो बस किसी अपने की आवाज़ सुनकर भी मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऐसी शांति में ऐसा होता है ना कि कई बार हम ऐसे बैठे होते हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसे इंसान की हम आवाज़ सुन लें जिससे हमारा मन अच्छा हो जाए। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आज सुबह जब आपकी आँख खुली तो सबसे पहले आपने क्या किया? मोबाइल उठाया, समय देखा, किसी का मैसेज चेक किया, या फिर 5 मिनट और सोने के चक्कर में अपने अलार्म को ही चुप कर दिया? सच बताइएगा, हमसे बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। हमसे क्या, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। और अब तो जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं तो लोग 2 मिनट की नैप के चक्कर में, 2 मिनट नींद के चक्कर में 1 घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। और इन सब के बीच जो देरी होती है, फिर जो भागम भाग लगती है, उसके लिए क्या ही कहें। तो इस कार्यक्रम में थोड़ी बातें होंगी, थोड़ी आपकी, थोड़ी हमारी, कुछ दिल की, कुछ ज़िंदगी की, और कुछ उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे दिल को खास बना देती है। और हाँ, गाने तो होंगे ही, क्योंकि कभी कभी जो बात हम किसी से कह नहीं पाते वो गाने के ज़रिए आसानी से कही जाती है। अब ये इसलिए भी गाने आपको सुनाएंगे जो आप चाहते हैं, आपके मन पसंदीदा भी सुनाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि नवरात्र का मौसम चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे ही गाने से जो आपको लगे कि हाँ, नवरात्रि चल रही है।

तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गाना? उम्मीद है कि सुनकर मन थोड़ा हल्का हुआ होगा। वैसे ज़िंदगी में एक बात बड़ी दिलचस्प है कि हम सबको छुट्टी चाहिए, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी चैन से बैठना मुश्किल लगता है। यकीनन दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि एक छुट्टी या दो छुट्टी, जिसको भी जैसे छुट्टी मिलती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो ऑफिस काम करते हैं और जो भागदौड़ आज की ज़िंदगी में हो गई है, हम पूरे हफ्ते के काम एक छुट्टी के लिए छोड़ देते हैं कि जब छुट्टी होगी तो हम ये कर लेंगे, छुट्टी होगी तो हम वो कर लेंगे। तो छुट्टी में आप इतना काम कर लेते हैं कि आपको खुद के रेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता, और आप नहीं करते हैं, आप कुछ और कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वो काम रह जाते हैं। तो सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता है तो हम मोबाइल उठा लेते हैं। मतलब हम खुद इतने आलसी होते जा रहे हैं कि हम अपने मोबाइल से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं। मोबाइल से बोर हुए, मोबाइल रख दिया, मोबाइल रख के बोर हुए तो मोबाइल उठा लिया, यही ज़िंदगी रह गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गाना।

तो दोस्तों बात कर रहे थे हम मोबाइल फ़ोन की कि मोबाइल ऐसा हो गया है कि हमारी ज़रूरत भी बन गया है और हम उससे आलसी भी होते जा रहे हैं। कभी कभी तो हम किसी का मैसेज पढ़कर सोचते हैं कि अभी जवाब देते हैं, फिर दूसरे काम में लग जाते हैं और ऐसा करके आप भूल जाते हैं कि उस इंसान को जवाब भी देना और कई घंटे, कई बार तो दिन भी बीत जाते हैं। और मज़ेदार बात तो यह है कि आजकल सब इतने व्यस्त हैं कि किसी से किसी को बात करने का समय ही नहीं है। आपको किसी से बात करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है या सोचना पड़ता है, शाम होगी तो हम उससे बात करेंगे या कल ऐसा होगा तो हम टाइम निकाल के बात करेंगे, लेकिन आपको वो टाइम आता नहीं है। और आप इस करके पता है क्या हो रहा है दोस्तों, दूरियां बढ़ती जा रही हैं।

हम जो अपने दोस्त हैं करीबी उनसे बिछड़ते जा रहे हैं, अपने जो घर के लोग हैं उनसे बिछड़ते जा रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है, मोबाइल के बगैर आज की डेट में काम भी नहीं है। तो हम किसी को, किसी भी इंसान को, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आप ही क्यों ना हो, किसी चीज़ का आदि नहीं होना है। किसी भी चीज़ की अति ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि परेशान करने वाली होती है, दुखदाई होती है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि अति चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, अति से ज़्यादा आप खा लेंगे तो वो आपको नुकसान ही देगा। और हालांकि ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, जिम्मेदारियां हैं, काम है, और आजकल तो आप जान ही रहे हैं जो भागदौड़ है, एक मिनट का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, तो ये सब होता रहता है। लेकिन फिर भी हमें इन सब के बीच में ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का, अपने करीबियों का, अपने घर के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, कि हम उनसे समय समय पर बात करते रहें, समय समय पर उनके लिए टाइम निकालते रहें, उनसे मिलते रहें। पहले क्या होता था, इंसान यूं ही मिल लेता था, लेकिन अब मौका ढूंढता है। तो हमें उन मौक़ों को नहीं ढूंढना है, बस मिल लेना है।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचाए। निस दिन देखूं जिनके सपने हो बैठूं वो प्रीतम।
2: दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिन बहुत जल्दी निकल जाता है? सुबह होती है, काम शुरू होता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। फिर रात में बिस्तर पर लेट कर याद करते हैं कि आज पूरे दिन हमने क्या किया और क्या क्या नहीं किया। कभी लगता है कि बहुत सारे काम कर लिए लेकिन अपने लिए कुछ किया ही नहीं। कभी लगता है कि दिन भर मेहनत की फिर भी कुछ काम अधूरे रह गए। और आजकल तो हर तरफ एक अलग तरह की भागदौड़ है। किसी को अपने करियर की चिंता है, किसी को घर की जिम्मेदारियों की, किसी को बच्चों के भविष्य की, तो किसी को अपना सपना पूरा करने की। और किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये सोचते रहते कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। होता है ना? तो हर इंसान के पास अपनी एक अलग कहानी है। हर कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिनके बारे में शायद दुनिया को पता ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी का हिसाब ना लगाएं। सोशल मीडिया पर किसी की घूमने की तस्वीर दिखती है, किसी की नई गाड़ी दिखती है, किसी का नया घर दिखता है, कुछ नहीं तो आजकल लोग कपड़े ही लेके फोटो डाल देते हैं कि आज हमने ये खरीदा, यहाँ से खरीदा, इतने का खरीदा। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम किसी की जिंदगी का सिर्फ वही हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। तो ये याद रखें, कभी किसी से किसी की तुलना ना करें, अपनी तुलना ना करें, क्योंकि जितनी बार आप तुलना करेंगे आप अपने आप को नीचा पाएंगे और दुखी होंगे। क्योंकि अक्सर आप देखिएगा कि जो इंसान दूसरों से होड़ में रहता है कि उसके पास ये है, ये मेरे पास ये नहीं है, वो अक्सर हमेशा इस उलझन में रहता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो परेशान रहता है। तो अगर तुलना करनी है, पहली बात तो तुलना नहीं करनी चाहिए। और अगर तुलना करनी है, क्योंकि मैंने ये सीखा है बचपन से, और मैं अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी साथी, सबको यही कहती हूँ, अगर तुलना करनी है तो अपने से छोटे जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनसे करो। क्योंकि कम से कम आपके पास घर है, कम से कम आपके पास गाड़ी है, कम से कम आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, उनके पास वो भी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप खुश रहेंगे और भगवान को बार बार थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ

0: आकाशवाणी रेनबो पर।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: कोयल सी तेरी बोली,

शुद्ध आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो चैनल। आइए अब सुनते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को सशक्त बनाने के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में कल बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हुई। सातों देशों ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर है। आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने से 13 लोगों की मौत, मृतकों में ज्यादातर नाबालिग। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर शोक जताया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमले की कोशिश। आरोपी महिला हिरासत में। सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गुन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। संस्कृति मंत्रालय का बृहत्तर भारत पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 4381 लोगों की मौत, 9000 से अधिक लोग संक्रमित। पड़ोसी देशों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। भारत के अनंत कुमार वेल कुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बनाई। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। कहा सरकार ने लोगों को सशक्त बनाने के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में कल बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हुई। सातों देशों ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का संकल्प दोहराया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का बयान, भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर। आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सड़क मेले में शामिल होंगी। बिहार के वैशाली जिले में गंगा नदी में नाव पलटने से अब तक 13 लोगों की मौत। मृतकों में ज्यादातर नाबालिग। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर शोक जताया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता में उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमले की कोशिश। आरोपी महिला हिरासत में। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। संस्कृति मंत्रालय का बृहत्तर भारत पर आधारित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 50 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कांगो में बोला के प्रकोप से अब तक 4381 लोगों की मौत। 9000 से अधिक लोग संक्रमित। पड़ोसी देशों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा। भारत के आनंद कुमार बेल कुमार ने पराग्वे में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत ने दूसरे दौर में जगह बनाई। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट शीतल गुप्ता। और अब हमारा जो कार्यक्रम है सारे गामा पा, उसका वक्त हो चला है। कुछ लोग उठ चुके हैं, कुछ लोग उठने वाले होंगे क्योंकि सुबह का समय है। स्टूडियो की घड़ी में 4:04 होने वाले हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही प्यारे गानों के साथ। आइए सुनते हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।